एक शब्द हम मैं तुम्हारे सामने पेश कर लगा, बहुमुला शब्द है। इस शब्द की कोई कीमत नहीं दी जा सकती। गुरु साहब सानू इस शब्द हम ये समझान लगे हैं, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एक साज जो हैं वो सानू इंट्रोड्यूस करन लगे हैं। उन्होंने पता है हर बंदा ना सितार सीख सकता है, हर बंदा ना तबला सीख सकता है, हर बंदा ना राग सीख सकता, बड़ी मुश्किल गल है राग सीखना, हर बंदा ना हारमोनियम सीख सकता, हर बंदे नूं कीर्तन करना नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस शब्द नूं पढ़ के दंग होया, हैरान होया, आनंद आया कि गुरु महाराज ने कहा ये साज नहीं भी आंदे तो कोई गल नहीं, असल साज ही और हैं, वो आने चाहिए हैं। प्यार नाल सुनो शब्द, कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज का ये महान रबी कलाम है, कहते हैं वाजा मत, जो अच्छी मत है ना वही असल वाजा है। इंटलैक्ट इज द रियल इंस्ट्रूमेंट, इंटलैक्ट विजडम, कहते हैं जो मत है ना सोजी अकल, यही असल वाजा है, ये वाजा होना चाहिए, बारला वाजा ना भी हो। अगली गल पखावज भाव, पखावज कहते हैं तबले, कहते हैं वाहगुरु का भाव ही असल तबला है, जिस दे कोल ए वाजा ते तबला आ गया कहते हैं होए आनंद सदा मन चाओ, उस इंसान की जिंदगी हमेशा आनंद रहेगा तो चा खड़ा बनिया रहेगा। तो सात संगत ए वाजे ते बार बार ही रह जाते हैं, ये अंदर ते पहुंचते नहीं हैं, कई दफा इन्हों बजाने वाले टोटली नॉन म्यूजिकल रह जाते हैं कई दफा। लेकिन गुरु साहब कहते हैं मत का वाजा अते वाहगुरु के प्रेम का जो तबला है ये तुहाडे पास है, ते असल संगीत तुहाडे पास है। कहते हैं अगे एहा भगत एहो तपताओ, एहो असल भक्ति है, एहो असल तप है कि गुरु दी मत दा वाजा अते वाहगुरु दे भाव दा प्रेम दा जो है वो तबला तुहाडे पास होवे, जिस दे पास ए साज है ना अंदर ले, क्योंकि मत भी अंदर है ते भाव भी अंदर है, जिस दे पास ए वाजा ते तबला है असल साज ते उस दे कोल है, असल संगीतकार म्यूजिशियन वो है। अगली गल कहते हैं एक रंग नाचो रख रख पाओ, जिंदगी दे रस्ते होते इस रंग दे विच वाहिगुरु दी मत अते वाहिगुरु दे पाओ दे विच कहते हैं पैर रख रख के नचदे हुए जीवन दे उते चले। अगली गल कहते हैं पूरे ताल जाने साला, पूरे ताल दा मतलब के ताल दी समझ, रिदम दी समझ, प्रकशन दी समझ, कहते हैं असल रिदमिक, असल तबला प्लेयर, असल ड्रमर ते ओ इंसान है जिहड़ा वाहिगुरु दी सिफत सलाह जानदा है। पूरे ताल असल ते तार ओ ताल ओ पूर सकदा है जिसनू वाहिगुरु की सिफत सलाह आंदी है, होर नचना खुशिया मनमा, बाकी बारला सारा नचना टपना जो संगीत है ये तो कहते हैं एक मन की गल है, मन दे तल ते है, इस तो अगे नहीं। अगे कहते हैं सत संतोख वजह दोए ताल, इथे ताल का अर्थ है छैणे। गुरु महाराज कहते हैं जिस इंसान दे पास सत है, सत का अर्थ है परोपकारी सुभा, सेवा करनी, केयरिंग एंड शेयरिंग। गुरु साहब कहते पास जिस दे पास केयरिंग एंड शेयरिंग एंड कंटेंटमेंट, सत संतोख कहते हैं उस दी जिंदगी दे विच दो छैणे वज रहे हैं। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, वाजा का अर्थ है पैरां दे विच जिहड़ियां झांझा घुंगरू। कहते हैं वाहिगुरु नूं निहारना उस दे दर्शन करने कुदरत दे विचों ही असल पैरां दे विच झांझना है, यानी ये अंदरले साज उन्होंने सानू दिते हैं। अगे कहते हैं राग नाद नहीं दूजा भाव, रब तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना हिरदे दे विच ही असल राग है। जिस बंदे दे अंदर ते नफरत है, ड्यूअलिटी है, लेकिन वह कहता मैनू राग बड़े आंदे हैं, बाबा जी कहते कोई राग रोग नहीं है, असल राग ते ए है कि वाहिगुरु तो अलावा होर को अंदर प्यार ना होवे, ए है असल राग। राग नाद नहीं दूजा पाओ, ए तरंग नाचो रख रख पाओ, इस रंग दे विच जिंदगी नू जो है रंगो, अते जिंदगी दे रस्ते दे उते जीवन दे मार्ग दे उते बाबा जी कहंदे हन नचदे हुए चलो, कुददे हुए चलो। अगली पंक्ति पाओ फेरी होवे मनचीत, जो डांस करते हैं वह फेरियां लेंदे हैं, सर्कलिंग करते हैं। गुरु साहब कहंदे हन मेक योर माइंड सर्कल अराउंड वाहिगुरु, अपने मन नूं वाहिगुरु दे आले दुआले पहुंचतियां दिओ। कहिंदे नें भाव फेरी, वाहिगुरु दा भाव ही असल फेरी होवे, नाच दी डांस दी होवे मनचीत, बहिंदियां उठदियां नीता नीत। फिर कहिंदे हन तुसीं देखिया होवेगा कथक डांस दे विच कई दफा कि जो नृत्यकारी करदे हन, जो डांसर हुंदे हन, ओह कदे घुमांटणियां लैंदे हन, कई किस्म दीआं मूवमेंट्स करदे हन, कई दफा ओह अचानक जमीन उत्ते लेट जांदे हन। बाबा जी कहिंदे हन लेटण लेट जाणे तन सुआ, ए समझ नूं समझना कि एक दिन इस तन ने हमेशा लई सुआह होके लेट जाना है, असल लेटना है, बाहरले इस लेटन नूं छड्डो, यानी जिसने ए लेटना नहीं सिखिया बाहरला लेटना जो डांस दा वो व्यर्थ है, बेकार है।
लेटन लेट जाने तनसवा इत रंग नाचो रख रख पाओ। अखीरलियां पंक्तियां बाबा जी कहने सिख सभा दिखिया का भाव। आ बहुत समझण वाली गल कहते हैं सिखा दी सभा सिर्फ ओयो हुंदी है जिथे दिखिया का भाव होवे। दिखिया कहते हैं गुरु के उपदेश नूं, भाव कहते हैं इंटरेस्ट नूं, प्यार नूं। कहते जिथे सिख गुरु की दिखिया गुरु का उपदेश सुन दे प्यार दे नाल जुड़े हैं ओयो असल सभा है। अदरवाइज कोई सभा नहीं, बाकी क्राउड होंगे। सिख सभा दिखिया का भाव, जिथे सिख दिखिया दे वास्ते, दीक्षित होण दे वास्ते, सिखण दे वास्ते, एजुकेशन लैण दे वास्ते, ग्रो होण दे वास्ते, डिवेलपमेंट दे वास्ते इकट्ठे होंदे हन, कहिंदे हन ओयो असल सभा है। सिख सभा दिखिया का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाम, गुरमुख दे अंदर ए शौक होवे सच्चे नाम नूं सुनन दा। अखीर च कहिंदे हन नानक आखण वेरा वेर, वाहिगुरु दा नाम हिरदे च हमेशा वार वार वार वार लई जाणा। कहिंदे हन इत रंग नाचो रख रख पैर। ऐ जग्यासुओ, ऐ गुरसिखो, जीवन नूं इक डांस बना लो अते सारी जिंदगी जो है वो जिंदगी दे मार्ग उते डांस करते चलो, डांस करते चलो। कोई गल नहीं जे तुहानूं बाहर लावाजा नहीं बजाना आता, कोई गल नहीं अगर तुहानूं बाहर तबला बजाना नहीं आता, कोई गल नहीं अगर बाहर तुसीं घुंगरू उते पैरां झांझणा पा के जो डांस नहीं कर सकते। बाबा जी ने अज दे इस शब्द दे विच जो असीं सुनिया है, होर किस्म दे साज सानूं जो हन इंट्रोड्यूस कीते हन, होर किस्म दे साज सानूं बख्शे हन। कहिंदे हन अगर ए साज तुसीं जीवन च लायाओ ते तुहाडा जीवन संगीत बन जाएगा, तुहाडा जीवन एक नृत्यकारी बन जाएगा। मैं फिर दोहरा दिया, मत दा वाजा, वाहिगुरु दे पाओ दा तबला अते सिफत सलाह दे घुंगरू। हजूर कहते हैं सत संतोख दे ताल अते पैरां दियां जो झांझरां हन वाहिगुरु नूं निहारना है जी। अगली गल कहते हैं वाहिगुरु तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना ही असल राग है। इस रंग दे विच नचो ते डांस भी उन्हें दस्या है कि वाहिगुरु दे सिमरन दे आले दुआले मन नूं कमाउणा ही असल फेरी है। तन नूं ए जानना कि एक दिन इसने सवां हो जाना ही असल लेटना है। तो इस रंग दे विच अपने जीवन नूं रंगो, जिंदगी नूं इस तरह संगीतक बनाओ, जिंदगी नूं इस तरह एक नृत्यकारी दे नाल करो। तो इन्हां शब्दां नूं असीं सुणीए। बाबा जी ने अंदरले साज दसे हन, अंदरला नाच दसिया है, अंदरली नृत्यकारी दसी है। अते जे किसी दे जीवन च ए नहीं साज हन, ओ बाहर जिन्ने मर्जी साज बजाई जाए ना ओ सजिंदा है ते ना ही ओ कीर्तनीय है। क्योंकि गुरु महाराज ने कीर्तनिया दे वास्ते भी एक गल कही है, वह भी मैं तुहानूं सुनानी चाहना हाँ। कहिंदे हन हजूर कहिंदे हन पलो पलो रे कीर्तनिया। असल कीर्तनिया ते ओ भला है, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। जेड़ा माया दे ना झूठे तंदियां नूं छोड़ दे, जिस दी विरती दे विचों माया दी साथ संग जरूरत सारियां नूं, कीर्तने नूं भी जरूरत है, उसने भी खाना है, उसने भी जीना है। लेकिन अगर उस दी विरती सिर्फ माया दे वास्ते कीर्तन करदी है, कीर्तन दा उसके अंदर कोई इश्क नहीं है, बाणी उसके जीवन का आधार नहीं है, ते हजूर कहंदे ना कीर्तनिया नहीं है। पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुनगाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। अगे चल के कहंदे हन कि असल कीर्तनिया ते ओ हुंदा है, पंच बचित्र करे संतोखा, पंच बचित्र करे संतोखा, सात सुरा लै चाले। कहंदे हन पंज जो बाजे हन, काम क्रोध लो मोहंकार, पंच बचित्र करे संतोखा, पंज किस्म दे जो धार्मिक गुण हन, सत संतोख दया धर्म धीरज, इन्हां नूं अपने बाजे बनाए। संतोखा सात सुरा लै चाले, बाजा माण तान। कहिंदे हन माण नूं तजना ही उस दा असल वाजा होवे। ताना पाओ ना बीगा काले, बुरे पासे रस्ते उते ना रखना पैर ही कीर्तनिये दियां असल ताना होण। तो ऐसा उपदेश महाराज ने सानू बख्शिया है। तो आओ अज दे इस कीर्तन दे विचों अपने जीवन दे विच इन्हां साजां नूं असीं अंदर लैके आईए। गुरु साहब ने कहा ओंकार एक है धुन, एक धुन एक है, ओंकार एक धुन एक है, एक है राग अलापे। कीर्तनिया ते कहंदे ओ हन जो उस एक ओंकार दी हमेशा धुन दे विच रहे ते उस वाहिगुरु दा हमेशा अलाप अलापदा रहे। एक का देसी हमेशा एक वाहिगुरु दे देश दे विच रहना उस दा सुभाव होवे। एक दिखावे सारी दुनिया नूं भी कीर्तनिया वाहिगुरु एक दे दर्शन कराने दी कोशिश करे। एको रहे आ व्यापे,
ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਪੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ

गुरु की साथ संगत आओ। साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उच्चारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांडा और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह जी का।

जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, गुण गावत ते उतर समय सच्चे के गुणगान, गुण गावत तेरी उतर समैल दिल सजाए हो मैं दुख है जन्म कर्म।

मेरे प्यारे, ओ माई बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

0: garde des tableaux doivent décider et faire entrer notre cadre de tout avril. Tout à fait, je ne vais pas dire que je suis un peu plus de एक नारी को आज हो गई सब कुछ टूट पैदा आगे हो गई थे और सब जी ने अपने बड़े सुंदर अंदाज के साथ उस संगीत की गलत गलत की थी हम सर संयोग जो बाल लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी रसिया साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सर संगीत जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना जी गलत पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गलत मजबूत ना बनता गल है आज गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है साधन जी भाई साहब जी कहा तो खाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी इस तंत्र शिव गल तो ठीक है मैं दो गल कह के साधन जी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो बड़े काम गवा ते पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कुछ स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आद का स्वरूप है ना परमेश्वर एक अनिच बात है जब जरूर सब समझ आए कि कीर्तन की है तो फिर सत्संग की आवाज की लोड़ नहीं झगड़े की लोड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राज पच्ची मिनट टाइम है राज तकरीबन 20-22 मिनट अंग्रेजी समाप्ति करेंगे शब्द की ठीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर तरफ चोट बिगाड़ी राग तकलीफ है शर्म करांगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफा है आओ आपकी मदद अगर बात मैं पूछ सदे भी लग जो नतीजे को इजाजत मसूर वाहे
1: वाहे।

महबूबे दीपा तक के कहे कि निमाणे निमाण निकाणे निकाण संकट श्री गुरु संस्था की हजूरी देखकर बड़ी उम्मीद के दिलाने बैठी गुरु शासन जो आप जी।

अरे मेरा भी, अरे भी साईं भी प्राप्ति नहीं, निराश होके फरीद एक दरख्त दे ठां बैठा। दरख्त दे उत्ते चिड़ियां बोलियां, फरीद निराशता विच सी, मन च ख्याल आया ए क्यों रौला पा रही है। चिड़िया वल तकिया, चिड़िया क्यों रौला पांदिया, पर चिड़िया फिर बोल दी, जंगल च रहने वाले पंछी बोल रहे हैं। फरीद नू गुस्सा आया, चिड़ियो रौला पांदिया हो तुसी मर क्यों नहीं जांदी, कहण दी देरी सी। सारियां चिड़िया धरती ते आके तड़फन लगी। फरीद ने तकिया, हो मन तू केडी भुल कीती, ए भी पंछी ते तू भी पंछी। आखो श्री वाहे, आऊं बलिहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वात, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। तो केडी गलती की, नाम जपन वाले दे मन च बड़ी कोमलता होंदी, बड़ा दर्द होंदा, दुखीए नू वेख के दुखी हो जांदा है, सुखीए नू वेख के निरंकार दा शुकराना करदा। ए सिमरन वाले दी अवस्था है, बंदगी करन वाले दी अवस्था। फरीद दे दिल च रहम आया, चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां उड़ गई। अच्छा मेरे अंदर तां शक्ति आ गई, मार भी दिता ते जवाल भी दिता। हौ मैं आई फरीद तुर पिया, गर्मी दी मौसम, सामने पिंड है, पिंड दे बार बार खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी भर दी, नेड़े आया। इस लड़की वल तक के फरीद ने कहा, बेटा मैनू पानी पिला। पर इस बीबी ने फरीद वल तकिया, पानी दा डोल कढ़िया, बाहर डोल दिता। फरीद ने फिर कहा, बचड़ा मेनू पानी पिला, मेनू डाढ़ी प्यास लगी, मेरे लब सुख दे जांदे। दूजा डोल कढ़िया, भी डोल दिता। फरीद नू गुस्सा आ गया, कितनी गुस्ताख लड़की, एनू पता ही नहीं कि मैं फकीर हां, मैनू प्यास लगी, मैनू पानी नहीं देंदी, डोल देंदी। अखां लाल करके फरीद ने कहा, पानी क्यों नहीं पिलांदी। तीजी वेरी जिसले फरीद ने बचन कीता, तो इस बीबी ने फरीद वल मुखातब होके कहा, ओ फरीदा, कोई ये जंगल दिया निखसमियां चिड़िया ना समझी, जिन्हां नू मार के जवाल लिया, मैं खसम वाली। आखो श्री वाली, फरीद नू पानी दी प्यास तां बुझ गई, ए प्यास लग गई, सोचदा इहदा इह तां मेरा नाम भी जान गई। जंगल विच चिड़िया मारियां ते जवालियां, जिथे इंसान तां की, इंसान दी जात हैवान भी कोई नहीं, इहनू किवें पता लग। फरीद ने कहा, बेटी तू अज मेरा मान तोड़ दिता, अला दस तैनू किवें पता लगा। तो इस माई रंग रतड़ी ने कहा, फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी, ए सारी बख्शिश मेरे पति दी है। किस तरह, कहण लगी, मेरी शादी हुई बाबल दा देश छड़ के, मैं अपने साईं दे देश चली गई। रात दा समा सी, अचानक मेरे कन्ना च आवाज आई, पानी। मैं तकिया, मेरे पति ने पानी मंगया। सोचिया एक पासे लोक लज्जा है, पहला दिन है, लोकी की कहणगे, दूजे पासे पति दा सच्चा ते सुच्चा प्यार, लोक लज्जा नू फरीद मैं ला के एक पासे चा रखिया। उठी ठंडे कड़े दे विच्चों ठंडे जल दा छन्ना भर के मैं पति दे पलंग कोल पहुंची,
पर निरंकार दी ने रात का समा सी मिठी मिठी पौन चल रही सी मेरे पति नु फिर नींदर आ गई। सोचिया जी मैं भी जाके सौ जावा पति प्यासा सुता पिया ए भी ठीक न ते जे जगाऊं दिया तो बेआराम। तो इस ख्याल फरीद पति दे चरना वल खड़ो गई लेके जल दा छन्ना। इस उड़ीक विच जिस वेले पति जागेगा पानी पी लवेगा। कोई समय दे बाद अचानक ही पति दे नेत्र खोले मेरे वल तके उस तकनी विच बड़ी बख्शिश मेर सी पुछे भागवान तू इत क्यों खड़ोती है सारी विपता दस पानी पी लो। फरीद फरीद मेरा पति उठे मेरे हथा तू लैके पानी का छन्ना अपने मुंह नाल जिसे लाया फरीद मैं सच दसदी हां पति दी बख्शिश द्वारा ज्यो ज्यो मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आंदा सी। आकृति रब पति दी प्रसन्नता भागवान तेरे उत्ते मालिक दियां मेहरा तेरे उत्ते साईं दी बख्शिश पति दी प्रसन्नता दे नाल फरीद मैनू तिना लोकां दी सोझी आखुशी। बाबा जी बचन करदे सन वड्डे बाबा जी इस्त्री पति अगे तिन बब्बे पढ़ लवे बब्बा पला जी बब्बा भुल गई बब्बा पाणा पुत्र माता पिता अगे पढ़ लवे सिख गुरु अगे पढ़ लवे घर च ही रब मिल जाएगा खुशी बाहर जान दी लोड़ ही घर च ही रब। इस्त्री नूं तां गुरमत विच बड़ी कंसेशन दिती है बड़ी रियायत दिती है मेरे धन गुरु नानक जिस रब नूं लोकी जंगलां च लभदे फिरदे धूणियां तपदे पुठा पुठे लटकते हैं किसी ने मोहन धारे है किसी ने सिर दे सुआह पा ली है रब की प्राप्ति वास्ते। पर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाते हैं इस्त्री अपने पति नूं परमेश्वर समझ लवे घर च रब मिल जाए मिल गया कई मिले बड़िया साखियां गुरु इतिहास के अंदर माई रजनी ने पिंगले नूं परमेश्वर समझ लिया माई रजनी ने पिंगले नूं कौड़ी नूं परमेश्वर समझिया पर प्यारी सतसंगत मेरे पंजे पाहिबा ते मैनूं पानी नहीं दिता पानी डोली क्यों जांदी है। माई रंगरती ने कहा फरीद कुछ मीलां उत्ते मेरी भैण दा घर है उहनूं अग लग गई उत्थे कोई पानी दा प्रबंध नहीं इथों पानी पहुंचा रही आ खुसरी वाले होर हैरान। फरीद ने कहा मैनूं सोझी नहीं पई मैं इतने साल बंदगी कीती माई रंगरती दे चरणा ते ढह पिया फरीद बेटी उमरा वालों तू भावे छोटी है पर गुणा वालों तू मेरे नाल वड्डी मैनू समत दे मैनू साई किस तरह मिलेगा कवन संयोग मिलो प्रभ अपने कवन गुण प्राण पत्र।

खोजत खोजत भई बैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गई, कोई गुरु तारण कर। बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लेवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया जी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी। गुरु मिल गया भाई सब कुछ, असि गुरु वाले ता बनते हाँ जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अस गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, ये गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना आवे ओनू फिक्र ही है। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज नहीं। लावारस कुत्तियां दे तरह मार मुकाया जाता है, उन्होंने जीवन किसके काम है। गुरु की वड्डी शक्ति, गुरु का वड्डा आसरा है, गुरु का बड़ा मान है। बुले शाह ने लिखिया ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजा पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुले शाह मैंने मुर्शिद मिलिया उस एवें चा बख्शाया एवें जिन उत्ते मेहर करते हुए भाई मेरा स्थानी। माई रंगी ने कहा फरीद कोई गुरु धारण कर, चला जा आज मेर ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है ओनू जाके तारी। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाहे। फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया 12 साल आ जा कीरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए इम्तिहान लगी फरीद दा पूरा अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान लिया अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, किथों लियावा अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वारी अजमेर गया है सके मुसलमाना दा दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनया होया है, ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उच्ची चढ़ के पहाड़ी ते उते अग भी पाल की थी। दूर वेखे अग दा लिशारा पिया, तुरन लगा ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उससे ले श्लोक उचारिया।

को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौड़ियां तो। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावई। जहरी कहाए पुन कौड़ा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौड़ियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की। भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन करदे हैं।

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साई बाबा वालिया ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर। कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नूं पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति बिरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, ओ किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिक्खी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु का

परमेश्वर पूज रहे ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तब उनका जानो वाह वाह गोविंद सिंह।

सारी। शिव कर्ण को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थुला, सब पर कृपा दृष्ट।